बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: काल सम्बत 1146 अधिक जेठ कृष्ण पक्षको नवमी तिथि।
1: ताजा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू।
0: दिल्लीबाट फर्किएको साता दिनमै परराष्ट्र मन्त्री खनाल बेजिङ जाँदै, संसदको गतिरोध हटाउन सर्वदलीय बैठकमा भएन सहमति। एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा एक तहमा चुनाव हारे तत्काल उम्मेद्वार बन्न रोक लगाउने प्रस्ताव।
1: सड़क बत्तीको मात्रै 10 अर्ब बक्यौता, एक चौथाई लागू औषधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू। प्रदेश र स्थानीय तहलाई 4 खर्ब बढ़ी अनुदान।
0: बाघ गणना सकियो, गैंडा को गणना रोकियो। साना व्यवसायीलाई बिना धितो 10 लाखसम्म डिजिटल कर्जाको सुविधा। करका दर हेरफेर र बजेट पूर्व सूचना।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

0: सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार में कुष्मा नगरपालिका पर्वत
1: निकट मा दीदी बहिनी विकट मा दीदी बहिनी यो रेडियो दीदी बहिनी।

को लाभ दी आप कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले दिउँसोको ठीक एक बज्यो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: जसको नाम नै पर्याप्त छ
2: दिदी बहिनी
1: दिदी बहिनी
2: दिदी बहिनी
1: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ
2: हामी
1: गर्न सक्छौ
2: गर्न सक्छौ।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 6 बज्यो।

बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आज बनौ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जिऊ।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 7 बज्यो।

0: बहिन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: सीता ए सीता
2: हजुर
1: रेडियो खोला था खबर चौतारी आने बेला भयो
2: ला खोली आले।

जनहित का लागि नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

अनुरोध हो गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रार को कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा नेपाल।

नगर कार्य पालिका को कार्यालय पर्वत, कुहिने न कुहिने फोर घर नगर पालिका को कार्यालय फलवास, कुहिने नागरिक बनौ सामाजिक जनहित का लागि फलवास नगर कार्य पालिका को कार्यालय पर्वत प्लास्टिक जन्य वस्तु को प्रयोग घटाऊ फलेवास नगर कार्य पालिका को कार्यालय पर्वत

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज को सहकारी में कुसुम नगरपालिका पर्वत

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।